0: நீங்கள் கரு உலக உரியன் பசிச்சுக்க নতুন জন্ম কনকাশন বল বলছে শুনবাং মাঙি ছিল
1: মুহূর্ত বল ফোন গাছের সঙ্গে সহজ কেনা।